0: स्वच्छता ले ली ते
1: एंसल पैक किन ली ते
2: जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश स्वच्छता ले ली ते कैश स्वच्छता ले ली ते
2: एंसल पैक किन ली ते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग
3: जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
4: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज
5: बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।

0: महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एक नम्बर सुनबाट निर्मित अत्याधुनिक डिजाइनका गहना पाइनुका साथै अर्डर अनुसार गहना सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ।
1: न्यू अछाम जालपडेबी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टिकापुर कैलाली संचालक ध्रुव सुनार
2: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक म बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-42-73-59।

0: 20% sama cash sapirta.
1: Saile pani chaha pani.
2: Cash sapirta. Linu bhai ta.
3: Ensel pack kinnu bhai ta. Jaile pani jaha pani. Pack kharid garnu hos. Ani 20% sama cash sapirta. Ensel app ma claim garnu hos. Ensel pack kinnu bhai ta. Sartharu lagu hune chan. Ensel Nepal kai lagi. 11 प्रकारका विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पतालमा उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
4: हाड जोड्ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड्नीको दूरबीनबाट शल्यक्रिया
3: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीनको माध्यमबाट पाठीघरको शल्यक्रिया सेवा
4: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जनद्वारा विभिन्न किसिमका शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीनको माध्यमबाट पेटको शल्यक्रिया सेवा
3: जनरल फिजिसियन विशेषज्ञ सेवा
4: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
3: दन्तरोग सेवा
4: मृगौलाका बिरामीका लागि डायलिसिस सेवा
3: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
5: हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार
3: र सिटी स्क्यान सेवा
4: गम्भीर बिरामीका लागि भेन्टिलेटर सहितको आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बालबालिकाका लागि एसएनसीयू सेवा
3: रोग पहिचानका लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलोजी हिस्टोप्याथोलोजी माइक्रोबायोलोजी पारासिटोलोजी सेरोलोजी इन्डोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल भिडियो एक्सरे अल्ट्रासाउन्ड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पतालका अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
4: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घण्टा
3: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
4: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
3: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
4: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाइ
3: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
4: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091560488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97628435 उपेन्द्र शाह 98216024 57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरीको फोन नम्बर 98557853022 खबर गर्नुहोला वा टिकापुर अस्पतालको क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला
6: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछसे सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल
7: अरे का करुरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु मिलबो नि करत का कैन हो का
6: मिस्तरान बर्जन औकन घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो ना कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए
8: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
9: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98481 43 26

0: के तपाईलाई थाहा छ?
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाइ शाखा टिकापुर कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
0: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकल छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
0: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल, घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर, फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: टिकापुर नगरपालिकाको सूचना। नगरपालिका भित्र सञ्चालित व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्न गराउनुका साथै दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका व्यवसाय अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ओडामा दर्ता गरौं।
1: भवन निर्माण मापदण्ड 2072 अनुसार नयाँ घर निर्माण गर्दा घर नक्सा पास अनुमति लिएर मात्र निर्माण गरौं।
0: यस टिकापुर नगरपालिका कार्यालय वरिपरि लगायत नगर क्षेत्रभित्र व्यवसाय गरी बसेका व्यापारीहरूले पसल अगाडिको सार्वजनिक जग्गा, बाटोमा टहरा लगाई पसलको सामग्रीहरू राखी व्यवसाय गरिरहेको र त्यस्ता कार्यहरूले सड़क दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकोले त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरौं।
1: नगर क्षेत्रभित्र रहेका घुम्टी ठेलाहरू तथा पसलमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यापारीहरूले आफ्नो पसलका अगाडि जथाभावी फोहोर गरी उचित व्यवस्थापन नगरेको देखिएकोले यथास्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गरौं र गराउ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर कैलाली।
2: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

विजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: छिछी फे चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बाक सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो त
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो
2: हजुर हो
0: महिन राजापुर बजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौ कन्थे टिकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लम्की मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 और 98 6 56 92 026

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके बिहानी 9 बजे थारू भाषक खोज खबरमा अपनाउकन स्वागत बा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम अपना उक्राब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हम पात्रो और नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से संघीयता सफल बनाए प्रदेश और स्थानीय तहबीज के सहकारी हुई पना मुख्यमंत्री भट्ट के कहाई देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव कायम आज 4 प्रदेश में भारी वर्षा के संभावना कैलाशेश्वर शिव मंदिर में 121 लघु रूद्राभिषेक पूजा मुख्यमंत्री निर्माण में सकुन के सहयोग हुई पना मन जोड़ ओलुम्बिनी प्रदेश सरकार में 3 मंत्री नियुक्त आज शपथ लेती आप खोज खबर विस्तार टीकापुर स्थित कैलाशेश्वर शिव मंदिर में 121 लघु रूद्राभिषेक करगिल बा शिव पुराण ओ वैदिक विधि अनुसार विशेष फलदायी मानजिना हुईला कौन से पूर्णता स्थिरता ओ शिव कृपा प्राप्ति के लाख 11 जना पंडित के सहयोग में रूद्राभिषेक करगिल हो नेपाल ब्राह्मण समाज नेपाल टीकापुर के आयोजना में साधक के मनोकामना पूर्ति पाप मोचन और जीवन में शांति समृद्धि लन्ना विश्वास के संग हरेक वर्ष देशभर के शिवालय में रूद्राभिषेक कार्यक्रम करना कई जैठ नेपाल ब्राह्मण समाज नेपाल टीकापुर के अध्यक्ष डम्बर उपाध्याय रिमाल लोक कल्याण के लागि लगभग शिवालय में लघु रूद्राभिषेक 121 चौकर्गिलक बटुलबाट शिवपुराण अनुसार रूद्राभिषेक करबेर शिवजी अत्यन्त खुशी हुना हुईला कुंवरसे 121 के जाप वा अभिषेक से साधक दीर्घायु आरोग्य ऋण मोचक मोच सम्म के मार्ग प्रशस्त करना विश्वास के संग दीर्घकालीन शांति और स्थिरता के कार्यक्रम करगिलक उहाँ के कहाइबा लघु रूद्राभिषेक करबेर मानसिक शांति आरोग्य ओ दीर्घायु समृद्धि पाप मोचन ओ मोच मार्ग अर्थात शिव कृपा से साधक आध्यात्मिक उन्नति ओ मोच के मार्ग खुलना उहाँ के कहाई रहलबा हरेक वर्ष साउन में कर्जिना रूद्राभिषेक यह वर्ष मलमास के कारण ढिला करगिलक हो धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले का महत्वपूर्ण मानगिलक शिव मंदिर के मुख्य मंदिर निर्माण हुई ती रहलबा पुरान मंदिर जीर्ण रहलक कुंवरसे करौदौ के लागत मन लौ मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुई लकुंवरसे मंदिर निर्माण तथा विकास मन सक्कू जस सहयोग करपना ब्राह्मण समाज के केन्द्रीय प्रतिनिधि धनराज उपाध्याय बटुलबाट हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव रहलक मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनैलबा हाल मनसून के न्यून चापीय रेखा सरदर ठाउँके आसपास मन रहलबा जैकर कारण से देशभर साधारणतया बदरी लागलबा बागमती गंडकी लुम्बिनी ओ कर्णाली प्रदेश के कुछ ठाव मन हल्का थे से मध्यम वर्षा हुई रहलबा आज दिनभर साधारणत बद्री लगुयाबा देश के हिमाली भूभाग के कुछ ठाव में चट्यांग सहित मध्यम वर्षा रहल के संभावना बा देश के पहाड़ी भूभाग के कुछ ठाव में चट्यांग सहित मध्यम वर्षा के संभावना बा बागमती गंडकी लुम्बिनी ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के कुछ ठाव मन ओ मधेश प्रदेश लगायत कोशी प्रदेश के तराई भूभाग के कुछ ठाव मन चट्यांग सहित

0: मध्यम वर्षा के संभावना बा। कोसी बागमती गंडकी ओ लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के एक दुई ठाउँमा भारी वर्षा के संभावना बा। मधेश तथा कोशी प्रदेश के तराई के कुछ ठाउँमा हावा हुर्के फिर संभावना रहल बा। आज रात का देशभर साधारणत बद्री लगुया बा। कोशी बागमती व गंडकी प्रदेश के हिमाली भूभाग के कुछ ठाउँ वो लुम्बिनी कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमाली भूभाग के कुछ ठाउँ चट्याङ सहित मध्यम वर्षा के संभावना बा। कोशी बागमती गंडकी व लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के कुछ ठाउँ व कर्णाली व सुदूरपश्चिम पहाड़ी भूभाग के कुछ ठाउँ मा चट्याङ सहित मध्यम वर्षा के संभावना रहल बा। मधेश तथा कोशी बागमती गंडकी व लुम्बिनी प्रदेश के तराई भूभाग के कुछ ठाउँ मा व सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के कुछ ठाउँ मा चट्याङ सहित मध्यम वर्षा के संभावना रहल बा। कोशी बागमती व गंडकी प्रदेश के हिमाली व पहाड़ी भूभाग के एक दुई ठाउँ मा भारी वर्षा के संभावना रहलक महाशाखा जनाइल बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री खगराज भट्ट स्थानीय तह के आवश्यकता और संवेदनशीलता हन प्राथमिकता मन धरती प्रदेश सरकार आग बहती रलक बटुला वहां प्रदेश स्थानीय तह बीच के संबंध थप बलगर बनेना बनैटी विकास निर्माण मन प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहलक बटुलाबाट गाउँपालिका महासंघ नेपाल और नेपाल नगरपालिका संघ प्रदेश सरकार से स्थानीय तह के अन्तर सम्बन्ध सुदृढीकरण सबलीकरण तथा समसामयिक विषय में ध्यानाकर्षण करैना उद्देश्य लेके आयोजना करगिलक कार्यक्रम में बोल्टी मुख्यमंत्री भट्ट स्थानीय तह के जायज आवश्यकता संबोधन कर प्रदेश सरकार सद तैयार रहलक बटुलाबाट मुख्यमंत्री भट्ट प्रदेश और स्थानीय तहबीच अधिकार और जिम्मेवारी के स्पष्ट बुझाई के संग सहकारी व समन्वय आघ बढ़ पर्ना मन जोड़ दिलबाट विकास के योजना निर्माण थे कार्यान्वयन समय तीनों तह के सरकार बीच प्रभावकारी समन्वय हुई सेकल से कलहक नागरिक संघीयता के प्रत्यक्ष अनुभूति कर सेकना के उहां के कहाइबा। कार्यक्रम मन गांव पालिका महासंघ नेपाल और नेपाल नगरपालिका संघ स्थानीय तह के योजना नीति निर्माण तथा समसामयिक विषय समेत गिलक ज्ञापन पत्र प्रदेश सरकार हन बुझैलबा। खोज खबरमा एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछै नेनीबाटी सुन्दी रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: लो इति छिटो आमा बन्न लागको त
2: भैला भागन छ भन्छु अब त थाहा पाउँदै छु सब सम्म पनि घरमा सकि नसकि सबै काम गर्नुपर्छ कस्तो गाह्रो हुन्छ पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन म त जान्नु परे जस्तै लाग्छ
1: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
4: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
3: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर। भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई भ्योस हुनु मुटुको धड्कन कम वा खडा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटि लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ ईसीजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-685-40-770। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा तीन मन्त्री नियुक्त हुइलबाट मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यकी सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर घरती, दिपेन्द्र कुमार पुनहन स्वास्थ्य मन्त्रालय, इन्द्रजीत थारूहन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ओ कृष्ण कुष्मा थारूहन कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा नियुक्त कलखित नियुक्त हुइलक। तीनजना नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा से सिफारिश हुइलक हुइट। लौ नियुक्त हुइलक मन्त्री हुकन के पद तथा गोपिनी दाके सपट प्रदेश प्रमुख के कार्यालय बुटोलमा आज दिनका 3:25 ढैगिल्बा मन्त्री परिषदकै अन्य सदस्यमा तुलसी प्रसाद चौधरी वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, रामजी प्रसाद घिमिरेहन सामाजिक विकास मन्त्रालय, सन्तोष कुमार पाण्डे सहकारी विकास ऊर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय, रत्न बहादुर खत्रीहन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भण्डारी लाल अहिरहन आन्तरिक मामिला कानून उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयकै जिम्मेवारी देना सिफारिश कैगिल्बा। आगह स्वास्थ्य मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा रहलक रामजी प्रसाद घिमिरेहन सामाजिक विकास मन्त्रालयकै जिम्मेवारी देगिल्बा। कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा रहल हुइलक तुलसी प्रसाद चौधरी हन वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयकै जिम्मेवारी तोकगिल्बा। ओस्तकन सामाजिक विकास मन्त्रालयकै जिम्मेवारी सम्हाल्ती ऐलक सन्तोष कुमार पाण्डे हन सहकारी विकास ऊर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयकै जिम्मेवारी देना प्रस्ताव गरगिल्बा। जानकी गाउँपालिका मन रक्तदान कार्यक्रम हुइल्बा। विश्व बन्धुत्व दिवस तथा राजयोगिनी दादी प्रकाशमणिके 19 पुण्यतिथि मन रक्तदान कार्यक्रम करगिलक हो। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 दुर्गौली स्थित ओम शान्ति मन हुइलक रक्तदान कार्यक्रम मन 12 फिन्ट रगत संकलन हुइल्बा। रक्तदान कार्यक्रम ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयके आयोजना मन हुइलक हो। ब्रह्मकुमारी सीता तिमिल सिन्हा राजयोगिनी दादी प्रकाशमणिके सम्झनामा देशभर रक्तदान कार्यक्रम आयोजना कलक बटुलबाट ब्रह्म कुमारीकै नेपाल व भारत मन रहलक सक्कु शाखा मन एकचो भदौ 5 गते थेसे 9 गतेसम्म रक्तदान कार्यक्रम हुइटी रहलबा। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट तीन तहकै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुई सेकल सेकलक नागरिक अनुभूति कर्नाकैको संघीयता कार्यान्वयन हुइना बटुलबाट नेपाल नगरपालिका संघ व गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति से धनगढ़ीमा आयोजित कार्यक्रम छलफलमा उहाँ संविधानमा हुइलक व्यवस्थाकै कार्यान्वयनकर्ती आपसी सहकार्य से संघीयता सफल बनाइपर्नामा जोर देलक हुइट। उह अवसरमा संघीयताकै जानकार खिमलाल देवकोटा प्रदेश व स्थानीय तहबीचकै समन्वय सहकार्य से सहासन शासन प्रणाली हन सुदृढ़ बनैना बटुलबाट उहाँ स्थानीय तहकै आवश्यकता व प्राथमिकता हन प्रदेश तथा संघीय सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम से जोड़कन आगह बढ़ाए पर्नाम जोड़ देलबाट। खोज खबरमा फेरफेर विश्राम विश्राम पाछैनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
5: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस्तो
6: मैं नहीं जाऊं।
5: उहाँ आफ्न अनुहार बिगर्के घर से बाहर नै निकर्छु।
6: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइको। यहाँ हेर, यी पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तू मैं अब भी जाए।
7: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
8: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। प्रतिनिधि सभाकै कालकै बैठकमा सांसद ठुङ्क्र बाराके बालिका गरिमा चौधरीकै बलात्कार पाछा हत्या प्रकरणमा दोषी उप हलिसेहली कार्यवाही गर परिवार हना न्यायदेह माकर्लबाट बैठककै विशेष समयमा सांसद ठुङ्क्र असिन घटनाकै ठिक ढंगसे कार्यवाही निहिलकलसे असिन प्रवृत्ति थप बहरके जैना बटुइटी जघन्य प्रकारकै घटना काकर बरटकना विषयमा गम्भीर अध्ययन कर्क प्रतिवेदन तयार कर्क कार्यान्वयन गर सरकार आग्रह कर्लबाट सांसद ठुङ्क्र उपभोक्ता के खाना पकाइना एलपी ग्यासो किसान समयमा मल निपैलक लगायत के विषयमा सरकार के ध्यान आकर्षण करैटी याकर उहर सरकार गम्भीर निहुइलक आरोप फे लगैलबाट वस्तक सांसद ठुङ्क्र नेपालकै कृषि क्षेत्र से राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एक चौथाई योगदान देलक उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रमा न बजेट बढ़ाइपना म सरकार बजेट कटौती गर बेर बसाई सराय थप बहर्ती गैलक बटुइलबाट सांसद ठुङ्क्र कृषि क्षेत्रमा सरकार के सिद्धान्त प्राथमिकता एक उहर बजेट औ रहलक बटुइटी सरकार समयमा सचेत होकन यी विषयमा पुनर्विचार गरपना धारणा धर्नबाट सांसद ठुङ्क्र देशके प्रधानमन्त्री भ्रमणमा रहबेर सुरक्षा प्रोटोकल हुन ध्यान दिएपना उपलब्ध स्रोत साधनके सही सदुपयोग गरपना भ्रमणबारे सदनमा जवाब दिएपना माग समेत गर्नबाट सांसद ठुङ्क्र अत्राब्याला बाढ़ी पहिरो जसिन विपदके कारण मुलुक आक्रान्त हुइलक सयौं बिघा खेतवा जमीन काटकन नाश हुइलक वाकर नाश हुइलक उहरसे वाकर व्यवस्थापन प्रति सरकार के यथाशीघ्र पहल करपनामा जोड़ देती जनता के माग शीघ्र सम्बोधन के लाग सरकार से आग्रह गर्नबाट आलू बिक्री के सुनिश्चितता हुइलपाछ कञ्चनपुर के किसान सुनित खुशी हुइलबाट कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुर के समन्वयमा कञ्चनपुर के किसान ओ फर्स्ट चैन्स फूड लिमिटेड बीच यहाँ वहां के किसान 80 बीघा जमीन में उत्पादन कलक आलू खरीद करना समझौता हुई पाछ किसान खुशी हुई लखुट आलू उत्पादन में आबद्ध किसान हुक्र बजार के समस्या नहीं हुई ना हुई पाछ किसान आलू खेती के थप विस्तार में लगना हुई बाट 2 बीघा जमीन में आलू खेती करती कंचनपुर के बेटकोट नगर पालिका 5 धरमपुर के कलुआ कामी यह वर्ष खेती विस्तार कर 5 बीघा पुगैना तैयारी में रहल बाट उत्पादन करगिलक आलू बजार सुनिश्चित हुई पाछ खेती बढ़ाई लगलक वहां बटुल बाट विगत के वर्ष में बजार में न्यून मूल्य बिक्री कर पना हो भण्डारण के लाक्षित भण्डार समेत निहुबेर समस्या हुइना करल रह कामिकल आब ज्ञान केन्द्र के समन्वय मन उद्योग से समझौता हुई पाछ बजार के समस्या निहोकन इहजो 5 बीघा मन जमीन 5 बीघा जमीन मन खेती करना तैयारी में रहल बाटो वहां विगत में 2 बीघा जमीन में आलू खेती करती एलक बटील बाट इहेजो हमारो उत्पादन करलक आलू खेटो से उठेना समझौता हुई बा वहां कल बजार के सुनिश्चितता हुई पाछ खेती विस्तार के योजना बा उह मार शुक्ला फाटा नगर पालिका 3 जोनहापुर के टीकाराम डंगौरा समेत इहे वर्ष आलू खेती बढ़ेना तैयारी में लागल बाट गैलक वर्ष 122 जना के समूह में 10 बीघा जमीन में आलू खेती करती एलक हुक्र इहे वर्ष 20 बीघा से धीर जग्गा में खेती करना तैयारी में रहल बाट फ्रान्स औरो महिनासे माध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रतिबन्ध लागू गर्नकै तयारी गर्नबा तर ट्रेड युनियन हुक र यी उपाय हली कार्यान्वयन गर कठिन हुइसेक्ना चेतावनी डेलाबाट फ्रान्सके सांसद जुलाईमा न 15 वर्ष तरके लड़का परगना सामाजिक सञ्जालमा पहुँच ओ माध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रयोग दुनो प्रतिबन्ध लगैना विधेयक पारित गर्दछ। यही राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोको लर्कन पक्रहन स्क्रीन आग कम समय बितैना वातावरण देह लनलक दबावके एक हिस्सा हो कैक कैगिल्बा सरकार लड़का पर्काओ किशोरी किशोरी किशोर किशोरी हुकन स्क्रीन के लटलेक हुकन के विकास रोकती रहलक धारणा फेटैगिल्बा। यह महीना के शुरू में देश के सर्वोच्च अदालत सामाजिक संजाल संबंधी प्रावधान खारिज करल पाछ म्याक्रोहन यह मुद्दा में आग बढ़ अनमल परल रह तर संवैधानिक परिषद से माध्यमिक विद्यालय में मोबाइल फोन प्रयोग प्रतिबंध लगैना अलग प्रावधान बारे कौनो निर्णय हुईनी हो। फ्रांस के शैक्षिक सत्र सेप्टेम्बर में शुरू हुई फ्रांस पहला नई 11 से 15 वर्ष उमेर के विद्यार्थी जैना कलेज माध्यमिक विद्यालय व प्राथमिक विद्यालय में लड़का प्रगण मोबाइल फोन प्रयोग कर प्रतिबंध लगा सिक्लबा। संसद यह महीना पाछ पारित हुईना आघने जुलाई के शुरू में माध्यमिक विद्यालय हुकन मन सेप्टेम्बर से ई उपाय कार्यान्वयन करकला तैयारी कर निर्देशन देगिल रह। यह समाचार के संग खोज खबर और अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से संघीयता सफल बनाए प्रदेश और स्थानीय तह बीच के सहकारी हुई बना मुख्यमंत्री भट्ट के कहाई देश में मानसून वायु के प्रभाव कायम आज 4 प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना। कैलाशेश्वर शिव मंदिर में 121 रूद्राभिषेक पूजा मुख्य मंदिर निर्माण में सप्तुन के सहयोग हुई बना मना जोड़ लुम्बिनी प्रदेश सरकार में 3 मंत्री नियुक्त आज शपथ लेना लीता बक्ला थारू भाषक खोज खबर अत्र और समाचार 12 बजे खबर संक्षेप सुन सेग्बी आबक खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी यहां धन्यवाद देती मैं गीता फी विदाई दू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।
9: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
10: यही भड़ो 20 गते शनिवार का दिन
11: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
9: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बडी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
11: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला।
10: डाक्टर आउने दिन यही भडौ 20 गते शनिबार
12: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर टाड़ा का बिरामी फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टीकापुर में अब देखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। संपर्क फोन नंबर 98 68 80 00 08 र 98 25 63 77 72।

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटा का आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाउ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिप ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन। ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई झोला उद्योग में। रट गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ल झोला है मरम फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाए, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो, यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू, तब तू मैं अब भी जाए।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इग्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरूमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्नुपर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय पत्र, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित लाभग्राही स्वयं तपसिल बमोजिमको नवीकरण शिविरमा उपस्थित भई भत्ता नवीकरण गर्न गराउन हुन अनुरोध छ।
6: शिविर संचालन हुने स्थान
5: वडा नम्बर 8 को कार्यालय भदौ 7 देखि 9 गते सम्म
6: र वडा नम्बर 9 को कार्यालय भदौ 10 देखि 11 गते सम्म।
5: सबै वडाहरूमा शिविर संचालन हुने समय बिहान 8 बजे देखि साँझ 5 बजे सम्म।
7: याद गर्नुहोस् 60 वर्ष उमेर नपुगेका विधवा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले अर्को विवाह नगरेको सिफारिस र अपाङ्गता भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको हकमा अपाङ्गता परिचय पत्र अनिवार्य साथमा लिई आउनु पर्नेछ।
5: थप जानकारीको लागि टीकापुर नगरपालिका र सम्बन्धित वडा कार्यालय, सम्पर्क नम्बर 98485-018-88, 98485-015-56 र 98486-13434।
7: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टीकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
2: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
1: ए यो टीकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
2: कहाँ हुनु भाइ? टीकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ।
3: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
1: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
4: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्रेक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
2: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-58-28।

0: सुरक्षित जीवन जिउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: जापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
2: कार्यक्रम छोट मिठ साता के बुधवार दिन के एक बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
3: जब देखनो तुहिन है।
2: यदि मन परत हुई कल से अपन मनन सुनेना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई। गीत मन परना के दुई ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0915162555 साता के बुधवार दिन के एक बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीत में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: बुका पिएर इठ कबु पेन सिलेर इठ कबु झलै फटाका आज इठ काकना हो बाबा के ओष्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहेरे
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर बरैठी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कैठ कबु पेंसिल हेरा कैठ कबु झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लन बो ओटो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पियर थी ना कबू पेंसिल रही ना झोला फाटल हुई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबो रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज़

जय गुरु बाबा। घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपने के मन की आवाज, समाज के लक्षण बेसी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम कार्यक्रममा अपने स्वागत बा। कार्यक्रममा अपने संगे संगे मई बाटो और मौलिक आवाज अपने हुकन के संगे सुनैती बारे टेक में बैठ के बाबू रत्नापुर मगर और यह रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज संगारे के अपने हुके जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विपटल में यात्रा में जहां हुई भी जे जहां हुई भी जोन ठाव में भी वह ठाव से हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनाक प्रणाली 091-5-61-255 के लाइन खोलाइबा। अगले कार्यक्रम मौसम सुहाना बा, पलघरी रमाइलो बा, जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान

हजुर बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रममा झोली आफ्नो हुकनगला कार्यक्रममा बाटो मैले छैन अमेरिक बैसा धेरै भाइ दिपेन्द्र अरू बाबु रत्न पुनमगर सँगै सँगै बटै उहाँकै एकदमै सगाईको सुरुमै हाम्रै मतलब ब्याकग्राउन्ड हुन् ओपनिङ टिम आउर बजा मारल थियो क्षमा माग्न चाहम। आज हो मंगलबार, मंगलबारको दिन कार्यक्रम चाहिँ अन्ताक्षरी अपनिङला हो। आज विशेष गरी गीत गायन एक चरहल रुचि रहल शौक रहल कार्यक्रममा सगाईको हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी जनाएक पना एकदमै जरुरी रही तो आफ्नोके हामी चाहिँ कल करेक्ट पना रही 091-5162-255 सँगै जे जहाँ उही कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी जनाए आफ्नोके विशेष गरी कार्यक्रममा यी कलसे आफ्नो कर हाम्रो रमाइलो गफी और हाम्रो चाहिँ विशेष गरी आफ्नो हुनुके सँगै गीत गाप और अन्ताक्षरी खेलप क साइकल से क का की कुकु के कई उसके असाइकल से अ आ ई ई ओ ओ ए आई कोई भी अक्षर से अपने संगे अन्ताक्षरी खेलप और थारू नेपाली भोजपुरी गीत गाप तीन चोट अपने के भी तीन चोट में गेमी चाहिए कार्यक्रम के नियम हो। और ये कार्यक्रम में कल कर भी तो विशेष करके गीत गए नक्षर हल संगारी प्रिय सब हल रुचि हल संगारी प्रिय हमन चाहिए कल कर भी का नाम जानकारी करम। मौसम सुहाना व पलघरी रमाइलो बाद जे जहां हुई भी कार्यक्रम में सहभागी जनाई भी का नाम अवलोकन निवेदन कहना चाहूँ फटाफट चाहिँ डायल करते कर भी 091-5162-255 के लाइन एकदमै हाम्रो आफ्नो हुकनगला खुल्ला कहिले बारी डायल करते कर भी ठीक ठाक गीत जोड़ गीत के पास मैंने बाटो डायल करते कर भी 091-5162-255 लाइन खुलाई बा।

0: मैत्र रोगी हुइगिनु मैत्र जोगी हुइगिनु बिल्कुलै रमाइलो गीत कार्यक्रममा जोडले आफ्नो कन्टिला कार्यक्रममा बाटोमा मिसन अनि के भाइ साथ भेटे भाइ दिपेन्द्र और बाबु रत्नपुर मगर और अपने उक्ले बाटी हमार संगे अपने जे जहाँ हो भी कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी जनाइ विश्व 91-561-255 अर्थात 091-561-255 एकदमै खुल्ला बा सगाई रूपले हाम्रो हरेक अथवार के आइतबार छोड़ के सोमबार मंगलबार बुधबार बिहीबार दिन के 1 बजे से करीब 1:45 बजे से हमें सोमवार मंगलवार बुधवार बिहीबार रेगुलर रही थी। सोमवार के दिन कार्यक्रम निशाना लगे थी उससे के मंगलवार के दिन चाहिए अपने हुकन के लग विशेष करके अंताक्षरी अपने के लग लगे थी उससे के बुधवार के दिन विशेष करके अपने हुकन के लग अपने के रोजल खोजल सोचल मन परल गीत अपने उनकन के संगे सुनई थी। कल से बिहीबार के दिन चाहिए अपने उनकन के टैलेंट कोई भी टैलेंट गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई टेलीफोन लाइन में बोल करना चाहूँ। हजूर राम राम।
1: राम राम
0: हजूर। नारायण जी हो
1: हजूर।
0: कसिन बा नारायण जी हाल खबर आज घाम बा बाहर हो
1: हजूर।
0: अपने ठक्के कौन ठाव में बाटी आज
1: मैं अपने गांव और बात
0: हूँ। अपने गांव और घाम लागल बाबाई के कार्यक्रम में सहभागी जन आज ही दिन कसी के बिताई बाटी कसी के समय चलता आज ही के अपने के
1: ऑटो
0: चलाई बाटी को दैनिक ऑटो चलाना काम तो ही चलते बनाई
1: हजूर चलती
0: ओके हजुर बहनी ओनी करेक्ट पड़ल कुछ कुछ कमाई पड़ल तप्टो बनी ना जिंदगी चले परी। ओके कार्यक्रम में सहभागी जनैली दुपहरी समय म एकदम आजकल कठक पानी परत अपने के वहां लिंग कटरा पानी परत रात के दिन के सांझ बिहान कठक पानी परत कुछ परत कि नहीं परत
1: पानी फर्क पड़ जाए फिर अपने एक गाँव वही गाँव में एक बाउंस को देते
0: पानी फैन
1: हाँ।
0: पानी फैन आजकल कल चहा कर रख नहीं
1: हजूर
0: कल ओके कार्यक्रम में सहभागी जनैली एकदम खुशी लागल आज चाहिए कार्यक्रम में अली अंताक्षरी खेलना हो अपने अंताक्षरी तो नहीं खेल ठूक थी तरह गीत चाहिए पकेबे सुने थी ना तो ली शुरू कई धारे आज पे एक ठो गीत ओके ली ली ली शुरू कई धारी हदबट के मामला में अब गायले गीत चाह गायले से गादारी

0: धेरै धन्यवाद, मजा गीत सुनैली, कार्यक्रममा सहभागी जनैली। अब हाम्रो एक ठो गीत बजाब अपने लग, अपने किहिन किहिन सुनाई चाहबी नामले।
1: सबसे पहले अपने
0: धन्यवाद
1: और जतरा भी नाथ पाठ गरे हमार जगतपुर में नवा स्तर बाटै है और नारायण चन्दन बाई बाई
0: हजुर राम राम फोन गरे रही नारायण चौधरी जी रमाइलो गफिर वहाँसे रमाइलो बातचीत हुई। अघि आफ्नो रूपमा हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी जनैते गर्वी, कार्यक्रममा आइटे गर्वी, कनामा जानकारी कति अब राठी भएर खाहरू गीत जोडब गीतके पास समय नै बाटो डायल गर्दै गर्वी 091-5-61-255 लाइन खुल्लै बा।

ಹಜೂರು ಆದರ ಸದರ ದರ್ಶನ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರಮಾಯಲು ಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಲಿ ಆಪಣಕ್ಕೆ ಫೇ ಹಮಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಭಾಗಿ ಜನಾಯಿ 091-561-255 ಅರ್ಥಾತ್ 091-56-125 ಎಕ್ದಮೇ ಖುಲ್ಲಾ ಬಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐವಿ ಕಲಸೆ ಆಪಣೆ ಕರ ಹಮಾರ ರಮಾಯಲು ಗಫಿ ತ ವಿಶೇಷ ಕರ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐವಿ ಗೀತ ತ ಗೀತ ಗೈನಾ ಇಚ್ಛಾ ರಹಲ್ ರುಚಿ ರಹಲ್ सब ग्रह संघारू के हमन कॉल कर भी और कहबी मई कार्यक्रम अंताक्षरी खेल आयल बाटू अंताक्षरी खेले आयल बाटू कना सोच बना के कार्यक्रम में आईबी जस्ते क साइकल से क का की कु के कई वस्ते के असाइकल से अ आ आई वस्ते के थारू नेपाली भोजपुरी अपने गायल गीत मई नहीं गाई पाइना मोर गायल गीत अपने नहीं गाई पाइना अपने का मोर गायल गीत तेस्तो पर्सन के कलर गाई नहीं पाइना ये चाहे कार्यक्रम के नियम हो यही नियम भीतर रहिए चाहे कार्यक्रम में सहभागी जनवी का नाम जानकारी करती बाटू तब फटाफट चाहे डाल कर भी और संघारू के जस्ता रेडियो मार्फत सुन ठीविकल से रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz मार्फत अपने रेडियो सेट मार्फत सुनी सकती वस्ते के मोबाइल सेट मार्फत 101 MHz सुनी सकती टीकापुर एफएम वस्ते के अपने हम अपने इंटरनेट के पहुंच बाकल से www.tikapurfm.org चाहे हमारे वेबसाइट मार्फत सुनी सकती और वस्ते के मोबाइल एप्लीकेशन मार्फत सुन दिकल से टीकापुर एफएम एप्स वस्ते के चाहे हमारे पात्र नेपाली पात्र मार्फत से अपने हमन अपने ठाव से इंटरनेट के पहुंच और संघारू के हमन सुने सकती का नाम है जानकारी करना जहां और जहां इंटरनेट नहीं हुई जहां रेडियो टी पर्टिकुलर से रेडियो टिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz में आपस सुने सकते कोई टेलीफोन लाइन में आलबाटे मैं बोल करना चाहम हजुर राम राम ओके वहां आए रहे हैं शायद लागत में संपर्क से दूर चल गए अपने होकर चाहे आई सकती 091-56-125 अथवा 091-56-125 लाइन एकदमै खुल्ला बाका नाम है जानकारी करम कार्यक्रम में भी सहभागी जनवे हजुर राम राम ओके कोई नहीं हुआ ठीक ठोक गीत जोड़ा गीत के बाद समय नहीं बाटो डाल करते कर भी 091-56-125 लाइन खुलाई बात

0: कबू का तीर रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गतिलो ठाउ से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक थो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब दिन ही जाबू रट गया झोला उद्योग में, रट गया झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: खाने मन तो कहा तर के जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फिर खान पर्छ।
4: तब तो एक्लो कहाँ ससरे यार, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाई छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नु पर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
3: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ,
4: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त, जब म निस्केँ काम गर्न थाले अनि पो कमाई छ त, यो कमाई पनि मेरो लागि होइन, हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
3: ओहो तैले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् जस्तै यार, अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
6: आइहो बड्डो घर कहिया सिज्जैब, पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जार सेक्ल।
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू, मिलबो मिलबो नी करत का कहीं हो का
6: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैल बाट, आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
7: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोपराइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98484-23326।

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी।
4: आई बुढल्ला सुन्तो कि नै वानन्दे गुज आगिलि न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइन आउने न पट्टा नि पैना त
5: अनि गहना बनाइन त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
4: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान से कि कतरा सुगर बना कान लबाटी
5: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाई आओ जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर फेहरी सिंह सुनार
4: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 और 9846 39261।

0: राम इलर काफे कबू कापी रेठ कबू पेन्सिल रेठ कबू झले फटाका आजी का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम तो
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई या झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान जी कटरस गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर थी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई या झोला उद्योग में रख गई या झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सन्ध्य 5 बजे थारू भाषक खोज खबरमा अपनौकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप सा हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। कैलाली से भन्सार छली के सारी हो ब्वाइलर मुर्गी लगायत के सामान पकड़ गिर। कैलाली अदालत से दोषी ठहर होकर फरार होगा 11 जना पकड़ाउ। संचार माध्यम नागरिक के अधिकारों सार्वजनिक हित केन्द्र में धरपना संचार मंत्री के कहाई। ऑटोमोबाइल क्षेत्र नेपाल के अर्थतंत्र के मेरुदंड हुईलक उपराष्ट्रपति यादव के कहाई। ओ लुम्बिनी सरकार के तीन मंत्री शपथ ले। कैलाली से भन्सार छली के सारी हो ब्वाइलर मुर्गी लगायत के सामान पकड़ गिलवा। जिला के विभिन्न ठाव से अवैध रूप में भारत से भन्सार छली कर ननलग अंताजी 2,78,000 बराबर के सामान पकड़ गिलक हो। भन्सार छली के साड़ी ब्वाइलर मुर्गी लगायत के सामान जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली के माताहट से कार्यालय में खटगिलक प्रहरी बेवारी से अवस्था में फेला पार्क नियंत्रण में ले। विभिन्न मुद्दा में जिला अदालत कैलाली से दोषी ठहर होकर फरार रहलक 11 जना पकड़ाउ परल। पकड़ाउ पर्नामा ठगी संबंधी मुद्दा 6 महीना कैट सजाई ओ 30,000 जरिमाना टोकगिलक लम्कीचुहा नगरपालिका 10 बैठना 32 वर्षीय श्याम बहादुर चौधरी। बैंकिंग कसुर मुद्दा मना 1 दिन कैट सजाई ओ 1,510 जरिमाना टोकगिलक लम्कीचुहा नगरपालिका 1 बैठना राज बहादुर थापा। चेक अनादर मुद्दामा 2 महीना कैट सजाई ओ 2,000 जरिमाना टोकगिलक लम्कीचुहा नगरपालिका 1 बैठना केशवराज जैसी। लिखित सम्बन्धी कसुर मुद्दामा 5 महीना 15 दिन कैद तो गिलक लम्कीचुहा नगरपालिका 10 बैठना खेम बहादुर चौधरी रहलबाट। अस्तकना बोक्सी सम्बन्धी आरोप मुद्दामा 1 वर्ष कैद सजाई व 5,000 जनहित तो गिलक टीकापुर नगरपालिका 7 वैद्य बैठना 27 वर्षीय मादाकना सुनील मिश्री। टीकापुर नगरपालिका 9 बौनिया बैठना 34 वर्ष के हीरामोती डंगौरा थारू ओ उहठाउ बैठना 45 वर्ष के लाली डंगौरा रहलबाट। वस्तक बोक्सी सम्बन्धी आरोप मुद्दा मन 1 वर्ष कैद सजाई व 15,000 जनहित तो गिलक भजनी नगरपालिका 1 बौनिया बैठना 50 वर्षीय जयराम डंगौरा उहठाउ बैठना 44 वर्षीय पदम डंगौरा 45 वर्षीय लहानु डंगौरा व 54 वर्षीय बाबुराम डंगौरा रहलबाट। जिला अदालत कैलाली के विभिन्न मिति के फैसला से कैद सजाय तथा जरिवाना ठहर होकन फरहार रहलक 11 जना जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली माटहट के कार्यालय से खटगिलक प्रहरी पकड़ाउ करलक हो।

0: जल विद्युत के धनी देश नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ के आयात घटाकना विद्युतीय सवारी साधन के प्रयोग जोर दिएपना उल्लेख करलबाट उपराष्ट्रपति यादव नेपाल जल स्रोतमा धनी हुइलको जल स्रोत उत्पादनमा वृद्धि हुइतिरलक अवस्थामा ईन्धन यातायातमा अरबौं रूपियाँ बाहिर जेना स्थितिकी अन्त्यकर विद्युतीय सवारी नै उत्तम विकल्प हुइलक बटुइलबाट मुलुकमा उद्यमशीलता सिर्जना कर नाडा अटो सो मोबाइल से खेलगिलक भूमिका के उच्च प्रशंसाकर्ती उहाँ नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्र के उत्पादन आवश्यक रहलक धारणा धरलबाट नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनैना लक्ष्य नाडा के हुइपनामा जोड़ देती उपराष्ट्रपति यादव वातावरण मैत्री हो प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माण के लाग चार्जिङ स्टेशन जसिन पूर्वाधार विस्तार मन सरकार निजी हातेमालो कर्का आग बढ़पना सुझाव फेडेलबाट उपराष्ट्रपति यादव अटो शैले सोले नेपाली अटोमोबाइल बजार हन चलायमान बनाकन आन्तरिक उत्पादन ओ रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुगैना विश्वास व्यक्त कलबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघके अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ मुलुकके अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहलक उहाँसे व्यवसायके मनोबल बढ़ाइना ढंगसे सरकार कार्यक्रम तर्जुमा करपनामा जोर देलबाट गैलक वर्ष अटोमोबाइल क्षेत्रसे राज्य हन 81 अर्ब राजस्व योगदान कलक जानकारी देती उहाँ मुलुकके कुल राजस्वके करिब 8-9% हिस्सा ओगटना क्षेत्र हन विलासिता के वस्तु के रूप में न कलहक ह्यार निहुना धारणा व्यक्त कलबाट आप आयात में न कलहक भर निपर्क स्वदेश में सवारी साधन और पाटपूर्जा के एसिम्बिंग ओ उत्पादन शुरू करपन आवश्यकता औलेती अध्यक्ष श्रेष्ठ स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र के विकासकै युवा के लाग स्वरोजगारी रोजगारी सिर्जना करपना बटुइलबाट खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछैनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटिए सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उक्रा संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा प्रविधिकीय तीव्र विकासकै सँग संचार

0: क्षेत्र रूपान्तर रोहिती र लसेफे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रता नागरिक के सूचना के अधिकार और सार्वजनिक हित संचार प्रणाली के केन्द्र मन ढरपना बटीलाबाट वहां कृत्रिम बौद्धिकता एआई डिजिटल प्लेटफर्म और लौ प्रविधि आत्मसातकर्ती विश्वसनीयता तथ्यपरकता सम्पादकीय जिम्मेवारी और लोकतांत्रिक मूल्य आमिल बलगर बनाईपना मन जोड़ देलाबाट सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपाल और सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ के आयोजना मन काठमाण्डौ में जारी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फर ब्रोडकास्टिंग डेवलपमेंटल एआईबीडीके 24वां सम्मेलन सम्बोधन करती संचार मंत्री डाक्टर तिमिल सिन्हा संचार प्रविधि परिवर्तन हुईलेसेफे नागरिक के सूचना पैना अधिकार प्रेस स्वतंत्रता ओ अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जसिन आधारभूत सिद्धांत परिवर्तन नई हुईना बटुलाबाट वहां स्वतंत्रता के संग संचार क्षेत्र के जिम्मेवारी फे जोरगिलक उल्लेख करती नागरिक सही निष्पक्ष संतुल्य और जवाबदेही सूचना उपलब्ध करेना संचार माध्यम के प्रमुख दायित्व हुईलक बटुलाबाट गलत सूचना व दुष्प्रचार के समाधान प्रतिबंध व नियंत्रण मन कलह ख्वाज निहिना बटुटी वहां बलगर पत्रकारिता मीडिया साक्षरता पारदर्शिता प्रभावकारी व्यावसायिक मापदण्ड व नागरिक के विश्वास अभिवृद्धि हन प्राथमिकता देहपना धारणा ढलबाट संकट प्राकृतिक विपद सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या जसिन अवस्थामा संचार माध्यम के भूमिका आमिन महत्वपूर्ण हुईना संचार मंत्री डाक्टर तिमिल सिन्हा के कहाइबा वस्त अवस्थामा नागरिक सही सूचना उपलब्ध कराइना के संग समाजमा विश्वास व स्थिरता कायम कर जिम्मेवार संचार माध्यम योगदान पुगेना उहाँ बटुलाबाट संचार मंत्री डाक्टर तिमिल सिन्हा अब संचार क्षेत्र सामना कठिन र लग धीर चुनौती कौनो एक देशमा सीमित नै रहलक उल्लेख गर्नबाट एआई गलत सूचना व दुष्प्रचार सीमा पार फैल सेक्ना व जलवायु परिवर्तन व प्राकृतिक विपद के प्रभाव फे बहुउद्देश्य हुईना हुईलक से देश मन ज्ञान प्रविधि और अनुभव आदान प्रदान आवश्यक रहलक उहाँ बटुलाबाट विश्वभर के संचार माध्यम वित्तीय दिगोपना बदलिदो पाठक दर्शक तथा श्रोता के व्यवहार और संचार संस्थाप्रति के घरदो विश्वास जसिन चुनौती सामना करती रहलक उल्लेख करती वहां सार्वजनिक सेवा प्रसारण के लाग चुनौती आमहीन गंभीर रहलक बटुलाबाट सार्वजनिक सेवा प्रसारण से व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के संग सार्वजनिक हित के जिम्मेवारी समेत पूरा करपना हुईलक उहर से याकर भूमिका विशिष्ट रहलक उहां के कहाइबा। कैलाली के अतरियामा बस के ठक्कर से मृत्यु हुईलक बझांग के सिन्की बोहरा के सब आमिन सेती प्रादेशिक अस्पताल में ढैगिलबा दोषी है कार्यवाही और मृतक परिवार क्षतिपूर्ति के विषय में हुईलक छलफल में सहमति जुट निस्याकल्पा छ सब अस्पताल में रहलक बझांग के मस्ता गांव पालिका छ घर हुईलक हाल गोदावरी नगर पालिका एक में बैठियलक बोहरा हन आईतवार महेन्द्र नगर से दारचूला उहर जैती करलक महाकाली यातायात के सुप्र 02001 956 नंबर के बस अतरियामा ठक्कर दिहल रह वहां अतरिया बस पार क्रमण पानी और भूजा बिक्री करती आयल रह दुर्घटना पाछ स्थानीय तथा मृतक के आफन्त बस चालक हन कड़ा कार्यवाही मांग करती आईतवार संध्या अतरिया बजार मन विरोध प्रदर्शन समेत करल रह दोषी हन कार्यवाही और मृतक परिवार हन उचित क्षतिपूर्ति के मांग करती इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती में छलफल हुई लेफे सहमति हुई स्याकलनी हो इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती के डीएसपी हीराम महरा के अनुसार सहमति नि हुई पा छ मंगलवार के बिहान पुनः छलफल के लागि सम्बन्धित पक्ष बोलैल रह मृतक बोहरा के सब हाल सेती प्रादेशिक अस्पताल में ढैकिलबा कलसे वहां के छलफल के लागि मंगलवार फिर बोला गेल रह। खोज खबर में फेरफे विश्राम पाछै निनीबाटी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल।
2: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नहीं करत का कही ना हो का
1: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
3: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
4: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्युरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
5: यही भदौ 20 गते शनिबारका दिन
6: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
4: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बडी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागु पदार्थ सेवन गर्ने
6: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
5: डाक्टर आउने दिन यही भदौ 20 गते शनिबार
7: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नवनियुक्त तीनजना मन्त्री मंगलबार पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलबाट बुटोल स्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा दिनका प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर घरती मगर नवनियुक्त मन्त्री हुकन शपथ खवैला खुइट। तीनजना मन्त्री नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा से सांसद हुइट जीमन दिपेन्द्र कुमार पुनहन स्वास्थ्य मन्त्रालय इन्द्रजीत थारूहन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय व कृष्ण कुशमा थारूहन कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयके जिम्मेवारी देगिल्बा। सुदूरपश्चिम नेपालकी विद्यार्थीहरू स्वदेश तथा विदेशमा उपलब्ध उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति रोजगार तथा करियर निर्माणकै अवसरसँग प्रत्यक्ष जोड्न उद्देश्यले धनगढ़ीमा वेस्टर्न नेपाल एजुकेशन समिट 2026 ओराइल्बा। अखबार मीडिया प्राली व ड्रीमलिंक एजुकेशन कन्सल्टेन्ट के संयुक्त आयोजनामा मंगलबार धनगढ़ी स्थित सिद्धार्थ कटेजमा आयोजित समितमा विभिन्न शैक्षिक संस्था कलेज शैक्षिक परामर्शदाता तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयके प्रतिनिधि हुकनके सहभागिता रह कार्यक्रममा धनगढ़ीके विभिन्न विद्यालय तथा कलेजके विद्यार्थी हुकनके सहभागिता रह। समित विद्यार्थी तथा अभिभावक उच्च शिक्षा विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति विषय तथा विश्वविद्यालय छनौट करियर योजना व अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक अवसर बारे सम्बन्धित प्रतिनिधि हुकनसे प्रत्यक्ष संवाद तथा परामर्श लेगिल रह। ह्यूमन राइट्स वाच के अनुसार कोलम्बियामा औषध लागू औषध गिरोह व विद्रोह समूह हुक्र सामाजिक सञ्जाल मार्फत लड़का परगना प्रभावितकै भर्ती कर्ती रहलबाट हुकनह जासूसी थेसे विस्फोटक पदार्थ बोक्ना ड्रोन सञ्चालन सम्ममा जोखिमपूर्ण काममा लगैना करगिलबा। सामाजिक सञ्जालके आकर्षक भिडियो एलोरिडमसे सशस्त्र समूहके महिमा गान कर्ती बाल भर्ती हन प्रोत्साहित कलक प्रतिवेदनमा उल्लेख बा। सन् 2021 यहाँ कम्तीमा 1500 लड़का पर्का भर्ती हुलक तथ्याङ्क सार्वजनिक कर्ती एचआरडब्ल्यू दोषी उप कड़ा कार्यवाही ओ ग्रामीण क्षेत्रमा संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर सरकार हन आग्रह गर्लबा। समाचारके संग खोज खबर ओराइल अन्तिम जेटी जेटी खबरके मुख्य शीर्षक फेरसे कैलाली से भन्सार छली के साड़ी ओ ब्वाइलर मुर्गी लगायत के सामान पकड़ गिर कैलाली के अदालत से दोषी थरों का फरार रहलक 11 जना पकड़ाओ। संचार माध्यम नागरिक के अधिकार व सार्वजनिक हेठा केन्द्र में धरपना संचार मंत्री के कहाई अटोमोबाइल क्षेत्र नेपालकै अर्थतन्त्रकै मेरुदण्ड हुलक उपराष्ट्रपति यादव के कहाई व लुम्बिनी सरकारकै तीन मन्त्री शपथ लिएर गीत आवकला थारू भाषा खोज खबर अत्र छ बजे खोज खबर सुन सकी अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र छपिलाल चौधरी धन्यवाद देती मई गीता फे विदा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुन्ती रवि राम राम।

0: कितना ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी वो 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीते कैश फिर तक ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते सर लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: जाई बेड भूक लगता खाजा बाकी नहीं ए काकी फे आयल बाटी राम राम काकी
1: राम राम हो नानी मजा बाटो ऐसन ले छाइट भारी हो स्याकल बाजे आप हली भुआस कर दिया परल है समय में भुआस कर दिल से आपन जिम्मेवारी फे वरी ना और जनक बात फे सुननी पड़ना
2: आ दीदी फे वो बेला आपन कटरा पहना इच्छा रह छुट्टी में भुआस कर दे मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्ता फिर डोरिया नी चाहू दीदी मई चाहे ई बाल विवाह कर नी चाहू ई बाल विवाह नी करन दीदी
3: शारीरिक मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कई देना से दाई वो बच्चा दोनों के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकर उ हिंसा के शिकार बन सकर वही है विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई से थीस उ रोजगार फिर नहीं पाए वो गरीबी में बाँच बाध्य हुई पड़थिन नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई असिन कराई से 3 वर्ष सम कैद वो 30,000 रूपया सम जरिमाना हुई सकर वो असिन भुआस कानूनी मान्यता
1: टीकापुर नगर पालिका वडा नंबर 3 से देगिलक जनहित में जारी संदेश
4: के तपाईलाई थाहा भयो
5: सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान वा सुर्ती सेवन गरेमा 100 रुपियाँ जरिवाना हुन्छ
4: कर्मचारीले धूम्रपान वा सुर्ती सेवन गरेमा अनुशासनमा नरहेको सरहमानी विभागीय कारवाही हुन्छ
5: सार्वजनिक संस्था वा स्थलमा सञ्चालकले धूम्रपान गर्न नपाइने सूचना टाँस गर्नुपर्दछ
4: सुर्ती प्रवर्धन हुने गरी कुनै संचार माध्यममा विज्ञापन गरेमा वा प्रायोजन गरेमा 1,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ
5: सुर्तीजन्य पदार्थहरू 18 वर्ष नपुगेकालाई गर्भवतीलाई शैक्षिक संस्थाको 100 मिटर वरिपरि बेचेमा फुटकर बिक्री गरेमा सजाएर राखेमा 10,000 सम्म जरिवाना हुन्छ
4: धूम्रपानले मुटु र फोक्सोलाई बिगार्छ क्यान्सर हुन सक्छ
5: चुरोटको धुवा वरिपरिका मानिसको फोक्सोमा प्रवेश गरी धूम्रपान गर्ने व्यक्तिलाई जस्तै रोग देखिन सक्छ धूम्रपान त्याग्न नसके स्वास्थ्य कर्मीको सहयोग लिन सकिन्छ
6: सुर्तीजन्य पदार्थ होइन स्वास्थ्य रोजौं
7: सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM द्वारा जनहितमा जारी सन्देश

0: ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी ओ 20% सम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीते कैश फिर तक ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते सर लागू हुई एंसल नेपाल के लग
2: सीतापुर नगर पालिका को आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाने कार्यक्रम संबंधी सूचना
3: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
2: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।